0: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथहॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
3: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
4: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: है
1: लाइका रेडियो लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
2: In Dubai
3: Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app Laika Radio Network Broadcasting across the UK with Asian stations. The Bollywood King, Bali Brambat. With the best of Bollywood classics every weekday at 1 p.m. Laika Radio.

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कह न कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच नाए।

ओ मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा और दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा ना और खाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावे।

चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साह पत साहिब, नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवै, लख होवै लखवीस, लख लख

0: This is Leica Radio.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
0: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: जदों भी comedy movie दी गल हुंदी है ता एक movie दा नाम हमेशा आंदा है. ओ movie जिने सबनु हसा हसा के लोट पोट कीता.
5: की कह रहे हो?
4: ओ movie जिदी story ने brain rot कीता.
5: की कह रहे हो?
6: गिप्पी ग्रेवाल, बिनु टिनो, सरगुन मेहता, फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज Carry On Jatta 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
7: और टिलो ने काला कोट एवे नहीं पाया.
4: This 26 June, Carry On Jatta 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है.
8: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
9: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
8: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
9: Or sales at leicamedia.co.uk.
10: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. New hits on Leica Radio.

0: Laika Radio Punjabi Laika Radio Mobile App te laikaradio.com te Alexa Play Laika Radio Punjabi Punjabi 7 stations One podcast One mobile app Advertise on Laika Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at laikamedia.co.uk.
1: नमस्कार, रवि शर्मा ब्रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like a radio.
0: Traffic and travel.
3: I'm Louisa Gale and it's slow now southbound on the M1. An accident has closed the lane between Junction 22 for the A50 at Colville down towards the M69 at Junction 21. As a long queue in Coventry this morning through Baggington as the A46 Kenilworth bypass remains closed southbound from this morning's accident. From the A45 Stonebridge Highway at the Festival Island down towards the Stony Road turnoff and remains slow in Wolverhampton City Centre on Ring Road St David's. A broken down vehicle partially blocking the carriageway as with the Bilston Road Island. And of course, a reminder, in Coseley, Ettingshaw Road is still closed from Meadow Lane towards Shaw Road and residual delays on the trams in Wolverhampton following earlier obstruction on the line.
4: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
0: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Leica Radio Network, broadcasting across the UK with Asian stations. Ye hai Leica Radio.
5: Leica Radio.
6: इतना सस्ता डील देखा है कभी
7: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी
6: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99 एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99 फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99 लैला बासमती राइस 10 kg 11.99 सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99 फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399 पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99 फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1 फाल्कन कैश एंड कैरी
7: 82 Assistant Street, LE12JU, yeah, Rowlett Hill, LE54UN.
6: Big deals, big savings, while stocks last.
8: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
9: Also explore 2026 cruises.
8: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
10: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ,
11: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ,
10: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ,
11: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ,
12: ਗਿੱਪੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
13: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
10: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
14: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
15: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
16: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
15: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
16: दिल तो टूट पे किया,
15: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
17: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
15: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
18: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HartyHanks.com. Harty Hanks. Outdated is out of business. Visit HartyHanks.com today.
11: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
19: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
20: खुद से भी ज्यादा।
11: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
20: जो बात मेरे दिल में है वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
11: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
18: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
0: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand. Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
1: तो आपको बताते चलें कि आज लंदन में मौसम सनी रहने वाला है और कुछ बादल भी छाए रहेंगे. मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री तक जाएगा और मिडलैंड्स में आज टेम्परेचर रहेगा अराउंड 23 डिग्री.
2: दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स. मनोरंजन विद रवि शर्मा.
3: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica Radio Network, broadcasting across the Midlands.

0: भाई अभी अभी तो मैं आई हूँ और अभी फिलहाल तो मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए फिक्र करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अभी अभी तो हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। वेंसडे का दिन है और आज है जुलाई महीने की पहली तारीख। कैन यू बिलीव, जुलाई महीने यानी कि साल का सातवां महीना शुरू हो गया है और देखिए कुछ महीने और बचे हैं एंड देन फिर हम नए साल में आ जाएंगे। और हमेशा हम यही बात करते हैं कि समय तो जैसे पंख लगा के उड़ रहा है। एनीवेज, हफ्ते दर हफ्ते समय आगे बढ़ता ही जा रहा है, इसी का नाम जीवन है। बस ये चाहते हैं कि आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी समय मिले हमारा साथ देते रहिए। ये है आपका मन पसंद लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, जहां पर एक बार फिर से मैं ऋतु शर्मा आपके साथ हूँ, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रवि शर्मा जी हॉलीडेज पर गए हैं, नेक्स्ट वीक से वापस आ जाएंगे, तब तक मैं इस शो में यानी कि उनके मनोरंजन शो में मैं आपका साथ दूंगी। और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और बस आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ गए। इनफैक्ट कई लोगों ने तो आने से उसके आए बाहर गाना मुझे डेडिकेट किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहूंगी, ये आप सबका प्यार है और इस प्यार को बनाए रखिए। थैंक यू।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 125.5 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा आपको ब्रांच में जाकर ऑनलाइन या फिर उनके योनो मोबाइल ऐप के थ्रू। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज इंग्लैंड और DR कांगो के बीच में मैच है। ये मैच शाम को 5 बजे से शुरू होगा और आज बेल्जियम और सेनेगल की टीम भी भिड़ेंगी। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आप अपना 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Like our radio.
3: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
4: This July, witness the rise of a new force.
3: Hi boys.
4: Yash Raj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shalvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
5: Jisse tumse baat karni hai. Rok lo.
4: Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal. Don't miss India's biggest female-led action event.
6: India Alpha se karega.
4: Alpha in cinemas from the 3rd of July.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
10: This summer, don't just step out, stand out. The Janan and J-Dot summer sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janan and J-Dot store from Saturday the 4th of July or shop the sale online from Friday the 3rd of July. Your next favorite look is waiting in store and online. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off this summer. Make your statement.
11: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटेटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
11: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटेटो चिप्स नाउ।
13: व्हेन यू गो अब्रॉड, एवरीवन नोज द बेस्ट वे टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टूड इज टू से एवरीथिंग इन इंग्लिश बट लाउडर।
14: फोर बीयर्स प्लीज गार्सन।
13: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: New hits on Leica Radio.

0: कुमार शानू की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी।
1: तुमसे कहूं तो मैं इन आँखों में जो रहूं तो।
0: इस फिल्म से था ये गाना और इसमें गाने जो थे वो आर डी बर्मन के म्यूजिक पर थे, यानी कि कुछ ऐसी धुने जो आर डी बर्मन ने बनाई थी लेकिन उन गीतों पर बोल नहीं बिठा पाए थे, ऐसी धुनों को लेकर इस फिल्म के गीतों को बनाया गया। और देखिए तभी तो ये गाने क्या मधुर हैं, कितने खूबसूरत हैं।
2: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आपके ढेरों मैसेजेस मिल चुके हैं लेकिन आपको फिर से याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो, लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, जहां पर आज ऋतु शर्मा एक बार फिर से आपके साथ है सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं जिन पर भी मेरी नजर जाएगी, लेकिन फिलहाल सुनाते हैं आपको आज के प्रमुख समाचार।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबरें भारत से। देश भर में मानसून का तांडव जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत सहित देश के 21

0: राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल से कश्मीर तक 1500 किलोमीटर लंबी मानसून पट्टी बनने से अगले चार दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मुंबई में मानसून की शुरुआत के साथ ही अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। वालकेश्वर में एक इमारत की बालकनी गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक बच्चे की जान चली गई है। आज 1 जुलाई है और आज से देश में कई नए नियम लागू हो गए हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों का समय बदला गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिवालयों में लेखपालों के बैठने का रोस्टर शुरू हो गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर भीषण हादसा हुआ है। राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बस और एक ट्रेलर की आमने सामने टक्कर में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कुछ खबरें दुनिया से सुनाते हैं। वेनेजुएला में जो भूकंप आया था उससे भारी तबाही मची है। वहां पर आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,943 यानी कि 1,943 हो गई है, जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद अमेरिका में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और यूरोप में हीट वेव जारी है। यूरोप के कई देश इस समय अत्यधिक गर्मी और ओमेगा क्राइसिस जैसी हीट वेव की स्थिति से जूझ रहे हैं, जिससे बुजुर्गों की मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। उधर ईरान में हालिया तनाव और युद्ध के बाद के घटनाक्रमों के बीच वैश्विक नेताओं की नजरें वहां की राजनीतिक परिस्थिति पर टिकी हुई हैं। और आपको कुछ और खबरें सुनाते हैं भारत से। आज एलपीजी सिलेंडर के दामों में भारी कटौती हुई है। आज 1 जुलाई से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में 183.50 की बड़ी 50 रुपए की बड़ी कटौती की गई है। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत 3,113 से घटकर 2,930 हो गई है। और आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बात की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता पर चर्चा की गई है। आज 1 जुलाई है और आपको बता दें कि आज भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। आज पूरे देश में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के योगदान को सम्मान दिया जाता है और ये दिन महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। और आज से भारत में पेड़ लगाने का एक हफ्ते का राष्ट्रीय उत्सव यानी कि नेशनल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल शुरू हुआ है, जो कि 7 जुलाई तक चलेगा। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
1: This is Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: So much.

0: 1970 में आई थी ये फिल्म शशि कपूर और हेमा मालिनी की, और मैं कहीं पढ़ रही थी कि जब हेमा मालिनी शुरू शुरू में फिल्म इंडस्ट्री में आई तो फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के जितने भी हीरो थे सब उन्हें देखकर काफ़ी क्रेजी हो गए थे, मतलब उनके दीवाने हो गए थे ऐसा मैंने पढ़ा है। और उन्होंने सब में क्रेज था कि हमें हेमा मालिनी के साथ काम करना है, और उसमें सबसे ऊपर नाम शशि कपूर का था। और काफ़ी साल बीत जाने के बाद भी जब उन्हें हेमा मालिनी के साथ फिल्म करने का मौका नहीं मिल रहा था तो उन्होंने बहुत जुगाड़ लगाई, कई सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात की कि भाई मुझे उनके साथ एज ए हीरो काम करना है, और तब जाकर उन्हें इस फिल्म में हेमा मालिनी के साथ काम करने का मौका मिला, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। और ये फिल्म पता नहीं चली थी या नहीं चली थी, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक हो तो गाना खूबसूरत होता ही है, और ये गाना भी बड़ा सुंदर था, जिसे आपने अभी सुना आपके मनपसंद रेडियो से। और आपके ढेर सारे मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं, थैंक यू। आप गीतों को पसंद कर रहे हैं, आप शो को पसंद कर रहे हैं, तो बस मैं क्या करूं। चलिए बात करते हैं आपकी आपके मैसेजेस की।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: तो भाई सबसे पहले आज हमें मैसेज भेजा है हमारे वियाना से अनिल सोनी जी ने। आप हमेशा ही प्यार से प्रोग्राम सुनते हैं, सो थैंक यू साथ देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भारत से हमारे साथ जुड़े हैं गिरीश जी, जो कहते हैं ये गाना तो अच्छा है, आपको पसंद आया, क्या बात है, एंजॉय किया, थैंक यू। आपने क्या लिखा है कि मूवी भी अच्छी थी, ये अभिनेत्री अच्छा आपने देखी होगी। मैंने तो क्या है कि ये 60s 70s 80s की बहुत ही कम फिल्में देखी हैं, मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ। अगर मुझे पता चल जाता ना कि ये फिल्म अच्छी है तभी मैं देखने जाती हूँ, नहीं तो मुझे 3 घंटे तो पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, उससे बेटर तो मैं गाने सुनना पसंद करती हूँ। तो समझ लीजिए शशि कपूर की, शम्मी कपूर की, राजेश कपूर, राजेश खन्ना की, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, ये जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं इनकी मैंने कोई भी फिल्में नहीं देखी हैं, सिर्फ 1-2 फिल्मों के अलावा, लेकिन गाने मुझे सब फिल्मों के बेहद पसंद है। तो थैंक यू, आप कह रहे हैं अच्छी है तो मैं मान लेती हूँ। विजय कोनवा जी, थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। भरत गंगाराम जी, धन्यवाद। मिसेस शेख याद दिला रही हैं कि ऋतु आज 1 जुलाई है, हाँ आज 1 जुलाई है, मुझे याद है। प्रज्ञा कहती है मैं भी सुन रही हूँ, मैं भी आ गई हूँ, स्वागत है प्रज्ञा। नरेंद्र भागिया जी, आपने हमारे साथ आज भी 4 लाइनें शेयर की हैं, और आपने अर्ज किया है, पढ़ते हैं क्या अर्ज किया है आपने, कि वक्त फिसलता है रेत की तरह, हम बस उसे संभालना भूल जाते हैं। कुछ लोग बहुत खास होते हैं जिंदगी में, हम बस उन्हें बताना भूल जाते हैं, और ऐसा अक्सर ही होता है। कभी कभार इंसान बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, बहुत तारीफ करना चाहता है, अप्रिशिएट करना चाहता है, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकलते। ये अक्सर ऐसा होता है पति पत्नी के बीच में भी, कई साल बीत जाते हैं शादी के बाद, और जब कुछ बहुत अच्छा पत्नी करती है या पति करते हैं तो एक दूसरे की कभी भी कोई तारीफ नहीं करता है, तो करनी चाहिए, बस वो कह लेते हैं कि ठीक है क्या तारीफ करना, अभी घर की हमारा ही तो पति है, हमारी तो पत्नी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी ने भी कोई ऐसी काम किया है, कुछ ऐसी बात है, तो उसको अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है। आप छोटी सी बात कहकर किसी को बहुत खुशी दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमसे तो तारीफ ही नहीं होती, तो ये सीखिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें एक पैसा भी नहीं लगता, लेकिन आप किसी को बहुत खुशी दे सकते हैं। अगर छोटा सा भी काम किसी ने अच्छा किया है ना, तो कर दीजिए ना तारीफ, क्या बिगड़ता है आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और हम बात करते हैं सहर जी की। हेतल सोलंकी, स्वागत है आपका। अर्जुन जी, प्रदीप जी ब्रैकनेल में सुन रहे हैं, चंदू शाह जी, हंसा जी, फारूक जी, आपने भी वो गाना मेरे नाम कर दिया है, आने से जिसकी आए बाहर, क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका। और ये कौन है जिन्होंने नाम लिखा है, क्या नहीं लिखा है, नंबर एंडिंग 529, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू। शेखर आनंद जी, थैंक यू। मृदु जी, आपने भी बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने निकल आते हैं, वरना मुस्कुराहट का क्या है, वो तो गैरों के मिलने पर भी चेहरे पर आ जाती है। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू महेंद्र पटेल जी, थैंक यू वजाहत, हरीश खत्री जी, थैंक यू। और जितने भी साथी घर में, गार्डन में, बाहर, काम पर, गाड़ी में, दुकान में, जहां भी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी का स्वागत है, सभी को कहती हूँ गुड मॉर्निंग।
1: ये है
0: तो अगर हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो भाई हम आपको बता रहे हैं कि दुबई के पास जाइए, दुबई नहीं, साउथ ट्रैवल के पास जाइए और दुबई की अच्छी डील्स के लिए बात कीजिए, हॉलीडे बुक कराइए। उनका नंबर है 02085748410 और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है।

0: यस्य कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में चमत्कार फिल्म से था ये गाना और फिल्म अच्छी थी। इसमें नसीरुद्दीन शाह भी थे, अनु मलिक का म्यूजिक था। और आजकल उर्मिला, आजकल नहीं, लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीकेंड पर उर्मिला मातोंडकर IBD यानी कि इंडियाज बेस्ट डांसर में आई थी और उनके गानों पर क्या डांस किया था बच्चों ने। मुझे बहुत मजा आता है उनकी परफॉर्मेंसेस देख देख के, और इस गाने को देखकर मुझे वही शो याद आ गया। और आपने भी गीतों को पसंद किया है, थैंक यू भावना। आपने कहा है कि यस तारीफ करनी चाहिए कोई काम करे, लेकिन मतलब अपने लोगों की पर कई लोग फेसेस बना लेते हैं। दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन आप बस अपना काम कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू साथ देने के लिए भावना जी, आपने बहुत सही लिखा है। वैसे अरुणा जी हमारे साथ है, मनोज जी क्रॉयडन में सुन रहे हैं, जर्मनी में प्रमुरन कपूर है हमारे साथ, हैरो से दिव्या है, राजीव पटेल जी हमारे साथ हैं, एंड फरीदा गुलाम अली जी थैंक यू, ज्योति पटेल जी थैंक यू। और बस अब बढ़ जाते हैं आगे, और थोड़ी ही देर में यानी कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में चिंतन भी होगा, लेकिन उससे पहले
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 126 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So Gold Rate is £96.7 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: Leica Radio.
1: Leica Radio.
4: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
5: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN।
4: बिग डील्स बिग सेविंग्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
6: वेलकम टू द जंगल।
4: फिल्म बिल्कुल फेक,
6: हमारे फिल्म आर्मी वाली,
7: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
4: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
6: और स्टार कास्ट है
4: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
8: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
4: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
9: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
10: किस लिए फिल्म में?
4: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
11: In Dubai.
12: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
10: Radio partner Leica Radio.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
14: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना। मंत्रा हॉलीडेज, कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
15: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
16: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
15: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
16: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
15: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
16: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
15: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
16: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location,
15: high appreciation
16: in Dubai.
17: Punjab the biggest tunes,

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर यह है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स. और इस शो में आज एक बार फिर से ऋतु शर्मा आपका स्वागत करती है, सिटिंग इन फॉर रवि जी. ये समय है चिंतन का, यानी कि आज के विचार का. और आज के चिंतन में एक बार फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें मैसेज बहुत खूबसूरत है. और ये कहानी है राहुल की. राहुल जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था, एक दिन ऑफिस में उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, जिससे कंपनी को बहुत नुकसान हुआ. बॉस ने उसे बहुत डांटा भी, और ये बात राहुल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. राहुल बेहद निराश और गुस्से में घर लौट रहा था, और रास्ते में मन ही मन किस्मत को कोस रहा था कि भगवान ने सारे दुख मेरी ही झोली में क्यों डाल दिए हैं. बहुत परेशान हो रहा था, इतना गुस्सा उसे आ रहा था कि बस पूछे ही मत. चलता जा रहा था, और तभी रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया. सोचिए, एक तो इतना गुस्सा, बॉस से डांट खाई, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद गर्मी में गाड़ी का टायर पंचर हो गया. अब तो राहुल के गुस्से का ठिकाना ही नहीं था. तपती धूप में गाड़ी से उतरकर वो झल्लाहट में और चिल्लाने लगा कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरी ही किस्मत क्यों खराब है. और गाड़ी को छोड़कर वहीं पास में एक पेड़ की छांव में बैठ गया. उसने देखा वहीं पास में एक छोटा सा लड़का, जिसके दोनों पैर नहीं थे, एक लकड़ी के फट्टे पर, यानी कि व्हीलचेयर जैसा उसने बना रखा था काम चलाने के लिए, उस पर बैठकर अखबार बेच रहा था. राहुल उसे ध्यान से देखने लगा. उसने देखा उस लड़के के चेहरे पर एक गजब की चमक और मुस्कान थी. वो हर आने जाने वाले को बड़ी उत्साह से अखबार दे रहा था. और तभी उसने देखा कि एक राहगीर ने उस बच्चे को अखबार के पैसों के साथ साथ एक बिस्किट का पैकेट भी दे दिया. बच्चे ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया, और उस राहगीर को बहुत बहुत खुशी के साथ थैंक यू कहा, और ऐसा लगा जैसे कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो. राहुल ये सब देख रहा था. उससे रहा नहीं गया, वो उस बच्चे के पास गया और उससे पूछा, बेटा तुम्हारे पैर नहीं है, तुम इतनी धूप में इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम इतने खुश हो, तुम्हें अपनी किस्मत पर गुस्सा नहीं आता? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब शुरू में बहुत दुख होता था, लेकिन फिर मैंने अस्पताल में उन बच्चों को देखा जो ना बोल सकते हैं ना देख सकते हैं. भगवान ने मुझे तो आंखें दी हैं, बोलने के लिए जुबान दी है, और मेहनत करने के लिए दो हाथ भी दिए हैं, तो मेरे पास बहुत कुछ है भगवान को धन्यवाद कहने के लिए, तो मैं दुखी क्यों हूं? मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं. बच्चे की बात सीधे राहुल के दिल में उतर गई. उसे अपनी छोटी सी परेशानी पर इतना तमाशा करने पर खुद से शर्म आने लगी. उसके दिमाग में अचानक से एहसास हुआ कि मुझ में और इस बच्चे में कितना अंतर है. राहुल ने तुरंत अपने आप को संभाला और उस बच्चे से सारे अखबार खरीद लिए, अपनी गाड़ी ठीक कराई, और एक नई एनर्जी के साथ घर लौटा. और अब उसके पास अपनी समस्याओं के लिए रोने की बजाय अपनी खुशियों के लिए मुस्कुराने की एक बड़ी वजह थी. एक छोटे से बच्चे ने आज उसे बहुत कुछ सिखाया था. और ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब भी आपको अपनी जिंदगी अधूरी या दुखों से भरी लगे ना,
तो एक बार अपने से नीचे या ज्यादा जरूरतमंद लोगों को देख लेना। आपको एहसास हो जाएगा कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है जो बहुतों के पास नहीं है, और जिसके लिए आपको ईश्वर पर, भगवान पर नाराज होने की बजाय उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए।

0: मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गाना अमृत फिल्म से आज के चिंतन के साथ जोड़कर सुनाया। चिंतन आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और उनके लिखे हुए अमर गीतों में से ये गीत एक है। और इस गाने की जो दो पहली लाइनें हैं ना, जीवन का सबसे बड़ा सच और दर्द को सहने की ताकत बयां करती हैं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक नजरिया भी है। जब तक हम सिर्फ अपने दुखों को देखते हैं, हमें अपनी जिंदगी सबसे भारी लगती है, लेकिन जैसे ही हम अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी मुश्किलों से मुस्कुराते हुए लड़ रहे हैं। और ये गाना हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिखाता है कि हमारे पास जो है उसके लिए हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हमें दूसरों के दर्द को समझना चाहिए और हो सके तो किसी की मुश्किलों को कम करने का जरिया बनना चाहिए। यही मैसेज आज के चिंतन में था और यही मैसेज आज के इस गाने में था। आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं, आपको चिंतन भी पसंद आया है। और हमारे परमजीत का कहना है कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये गाना बहुत खूबसूरत है। थैंक यू आपके मैसेज के लिए, आपको चिंतन अच्छा लगा। इसके अलावा ढेर मैसेज है, सलमा जी कैंट में सुन रही हैं, विनोद जी आपको भी अच्छा लगा चिंतन आज का, थैंक यू साथ देने के लिए। जैस्मीन थैंक यू आपके मैसेज के लिए। क्रोइडन से महेंद्र पटेल जी, हंसा जी, भारत से गिरीश जी कहते हैं न खुशी अच्छी न मलाल अच्छा, जिस हाल में ईश्वर रखे वो सबसे अच्छा, काश कि ये बात हम सब समझ जाए। थैंक यू शेखर जी, अर्जुन जी थैंक यू, राजेश जी आपने भी लिखा है कि आप शुरू से शो में जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि कभी कभी एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ गलत हो जाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हे ईश्वर हमारे साथ ही क्यों। लेकिन हर असफलता बुरी स्थिति बदलाव का मौका देती है। और आपने लिखा है कि आपको याद है कि आपके बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जब तुम बुरा और उदास महसूस करो तो उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी गरीब हैं, जिनके पास तुम्हारे से कम है। होता है ऐसा अक्सर ही, काश कि हम सब ये बात हमेशा अपने जहन में रखें, अपने दिमाग में रखें, तो शायद हमको ये दुख कभी भी नहीं होगा। लेकिन हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं, और इसीलिए तो चिंतन है जो बार बार आपको अच्छी बातें याद दिलाता है, ताकि कुछ समय के लिए ही सही अच्छी बातें दिमाग से गुजरती है ना तो मन अच्छा हो जाता है और हमें फिर से याद आ जाता है कि हाँ ये अच्छा है, सीखने लायक है, आगे से हम ऐसा ही करेंगे। थैंक यू राजीव पटेल जी, भरत कंगराम जी, अनिल सोनी बियाना से, भारती जी, फतेह पटेल जी, रंजन जी, जगदीश जी बुसी से, राजकुमार जी, रागिनी जी, रानी जी थैंक यू, मानु जी आप हमारे साथ हैं, प्रकाश सुधार, पूरन कपूर जी एंड आनंद तोमर जी, जय सियाराम, सभी का स्वागत है आपका। चिंतन पसंद किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब लौट चलते हैं गीतों की ओर और सुनवा देते हैं आपको एक बहुत ही मीठा सा गाना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 पाउंड के बदले में आज आपको मिलेंगे 125.5 भारतीय रुपए, और हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via branch online और by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज इंग्लैंड की टीम और कैंगो की टीम आपस में मैच खेलने वाली हैं और आज बेल्जियम और सेनेगल का मैच भी होने वाला है। लेकिन याद दिला दें कि आप बिल्कुल मत भूलिए अपना 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स, कॉल 0203 345 2000 और विजिट rak law.co.uk।

0: मुकेश जी की आवाज में ये गाना आज कई महीनों के बाद प्रोग्राम में शामिल किया है और हमारी निर्मला जी आपको गीत अच्छा लगा है, चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। वैसे मिलन फिल्म से लिया था ये गाना जो सुनील दत्त और नूतन की फिल्म थी और इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते थे और इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था और सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक हैं। जब भी बजते हैं आप सबको पसंद आते हैं तो थैंक यू साथ देने के लिए, मैसेजेस लगातार मुझ तक पहुँचते जा रहे हैं।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो ये मैसेज भेजा है परमजीत बासी जी आपने स्लाफ से और आपने गुलजार की लिखी हुई दो लाइनें हमारे साथ शेयर की हैं। लिखा है इसमें कि बहुत गुरूर था छत को छत होने पर, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। बिल्कुल सही बात है, इंसान के साथ भी यही होता है, इसलिए कहते हैं ना गुरूर कभी नहीं करना चाहिए। और ये चिंतन के लिए एक अच्छा मैसेज है, जरूर कोशिश करूंगी कि इस पर कोई कहानी बुन सकूं और आपको सुना सकूं। थैंक यू अर्जुन जी, बहुत धन्यवाद। आपने ये क्या कहा है मुझे चेक करना पड़ेगा पहले, आपने जो मैसेज किसकी बर्थडे आप मना रहे हैं पहले चेक करती हूँ है भी कि नहीं आज, मुझे नहीं लगता कि इनकी बर्थडे जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। थैंक यू मानू जी। और एक मैसेज आया था ज्योति पटेल आपका, आपने बताया है कि आज आपके नेफ्यू की 31st बर्थडे है और सारा परिवार उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देना चाह रहा है। तो ज्योति पटेल जी की ओर से उनके नेफ्यू को जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां और अगला गाना उन्हीं को डेडिकेट करती है। और उनके साथ साथ विजय घोनोवा जी, थैंक यू, स्वागत है, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। किरण जी हैरो में हमारे साथ हैं और हमारे राजीव पटेल जी ने देखिए क्या बात मेरी मानी है, उनकी पत्नी जी ने उपमा बनाया है, एक नहीं दो नहीं ढेर सारी वेजिटेबल्स डालकर, और उन्होंने जी भर के उनकी तारीफ भी कर दी है। अभी से ही शुरू कर दी आपने मेरी बात माननी, आप सच्चे स्टूडेंट हैं, बिल्कुल अच्छा किया, तारीफ करने में देर नहीं करनी चाहिए और खास तौर पर पत्नी की, जितनी तारीफ करेंगे उतना ही अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, सिंपल है ना।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा,
0: तो बता दें आपको कि लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट रिलीज हो चुका है और इसका टॉपिक है ट्रेडिशंस एंड टाबूज और इसे हो रेडियो वाली ने होस्ट किया है और आप हमेशा की तरह लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं अमेजोन पर, स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं सब जगह हमारा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है।
1: It's all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
6: OMG!
5: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
6: Murder Mystery!
5: That's in Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. NKDW.co.uk, exclusive radio partner. Like a radio.
7: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ,
8: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ,
7: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ,
8: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ,
9: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਟਿੰਨੋ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
10: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
7: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
11: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
6: Be part of a historic grand opening.
2: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
6: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
2: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
6: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
12: Four beers, please, garçon!
8: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: Your favourite show on Leica Radio Midlands. You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
13: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
14: Okay, help's on its way.
15: Grab my hand!
16: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
17: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
18: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: खूबसूरत गाना लता जी की आवाज में, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो, ऋतु शर्मा आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और आपके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं। इंद्रा जी ने वेम्बली से हमारे साथ गुड न्यूज शेयर की और आपने बताया है कि आपके नेफ्यू ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री क्लियर कर ली है और सारा परिवार उनके अचीवमेंट पर उन्हें बधाइयां दे रहा है और कह रहा है कि उनके सारे सपने पूरे हों। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी फैमिली जिसमें शामिल है प्राउड पेरेंट्स धनसुख एंड बीना फ्रॉम विश्ववादिया एंड ढोकिया फैमिली, तो हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाइयां विनय। और इसके अलावा निर्मला ने मैसेज भेजा है, निर्मला जी लिखती है, ऋतु मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ लेकिन मेरे पति मेरी तारीफ ही नहीं करते। अब निर्मला जी मैं क्या करूँ, मैं नहीं उनको समझा सकती। मैंने जो राजीव जी का भी मैसेज पढ़ा था, या तो आप मेरे शो में से उनको वो सुनवा दीजिए, या राजीव जी से मिलवा दीजिए, या मेरा शो में शुरू में जब मैंने बात बोली थी एक बार सुनवा दीजिए, शायद कुछ परिवर्तन आ जाए। पर अब ये सब आपको ही करना पड़ेगा ना, मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन मैं चाहूँगी कि जल्द ही वो आपके खाने की आपकी तारीफ करना शुरू कर दे। Thank you, साथ देने के लिए।
1: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 126 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 96.7 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Leica Radio.
5: Leica Radio.
6: This summer, don't just step out, stand out. The Janan and J-Dot summer sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janan and J-Dot store from Saturday the 4th of July or shop the sale online from Friday the 3rd of July. Your next favorite look is waiting in store and online. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off this summer. Make your statement.
7: सीता आज लंका खुद जलाने आई।
8: This July, witness the rise of a new force.
7: Hi boys.
8: Yash Raj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shalvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
7: मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। रोक लो, तो बात कर लो।
8: Alpha. Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal.
9: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
8: Don't miss India's biggest female-led action event.
9: India Alpha से डरेगा।
8: Alpha in cinemas from the 3rd of July.

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
4: Discover Kailash Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
3: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
4: Also explore 2026 cruises
3: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
5: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
6: Well, she's talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
5: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
7: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 01163325100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में. कुछ एग्जाइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 01163325100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
8: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: listen to Laika Radio 90s on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए.
2: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा.
3: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम.
1: अरे कहाँ हो तुम?
2: हो आलो आलो
3: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम.
0: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
4: Spring hits on Laika Radio Network.

0: सुभाष घई की इस फिल्म ने कमाल किया था। लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। शुरुआत में तो ये फिल्म ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन बाद में इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया। मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद है। पुनर्जन्म पर आधारित है इस फिल्म की कहानी, और ऋषि कपूर ने, सिमी गरेवाल ने क्या काम किया है, और साथ ही साथ कमाल का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस फिल्म में बेस्ट म्यूजिक के लिए उन्होंने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर का अवार्ड भी जीता। और ये गाना हमारे मुकेश जसवंतरी जी ने भी पसंद किया है। चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। उल्लास साथ दे रही है हमारा जैस जी, आपका भी मैसेज मिला है, हाउ फनी। कहती है, निर्मला जी से कह दो कि अगर पति खाने की तारीफ नहीं करते तो अगली बार से उनके खाने में थोड़ा ज्यादा नमक मिर्च मिला देना, फिर अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। क्या आइडिया दिया है, ओ माय गॉड, घर में आप लड़ाई करवाओगी जैस हैं? थैंक यू शेखर जी, राजीव पटेल जी, भारती जी, निर्मला जी, जो भी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गीतों का सिलसिला इस आवर में भी यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें एक बार फिर से।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 125.5 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और अब आने वाला है शमशाद बेगम की आवाज में अगला गीत, क्योंकि इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है शमशाद बेगम, जिन्होंने अपने जमाने में कई सारे सुपरहिट गीत गाए हैं, और ऐसा ही एक बड़ा ही खूबसूरत पॉपुलर गाना चुना है मैंने बजाने के लिए। अब से बस थोड़ी ही देर में सुनवाती हूँ।
2: ये है लाइका रेडियो।
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: Welcome to the jungle.
6: Film? Bilkul fake.
5: Hamari film army wali.
7: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
6: डेंजर, एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
5: और स्टार कास्ट है
6: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
8: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
6: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
8: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
9: किस लिए फिल्म में?
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
3: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
12: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
3: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
12: Or sales at leicamedia.co.uk.
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
2: Yeh hai Leica Gold.

0: क्या गाना है मेरे पिया गए, आहो बहुत ही पॉपुलर गाना है ये गाना। पतंगा फिल्म से लिया था, जिसमें रामचंद्र सी रामचंद्र जिनका म्यूजिक था उनकी आवाज भी थी और साथ में थी शमशाद बेगम जो हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक है और उनके गाने आपको हर शो में एक तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। दिनेश पोपट जी आपका मैसेज आया है, थैंक यू साथ देने के लिए। एंड विभाकर जी गार्डनिंग भी कर रहे हैं, स्टेनमोर में है और गीतों को भी सुन रहे हैं, सो थैंक यू साथ देने के लिए। एंड ऑफकोर्स फरीदा जी ने कहा था कि शमशाद बेगम का गाना मेरे नाम करना, तो बिल्कुल आपके नाम जाता है। और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं 70 प्लस या 65 प्लस, उन सभी के नाम पर जाता है ये गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: दलेर मेहंदी की आवाज में 90s में उनका एल्बम आया था हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, और इसके सारे के सारे गाने बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे, और इसीलिए आज इस गाने को प्रोग्राम में सुनवाया। और अगर आप और भी 90s के गीत सुनना चाहते हैं तो आपको बता दें कि द लेजेंडरी हरिहरन यूके आ रहे हैं सोल इंडिया अपना शो लेकर एट रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन, और ये सब कुछ होने जा रहा है दिस सैटरडे 4 जुलाई को। टिकट्स अवेलेबल हैं एट southbankcentre.co.uk पर, और इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क। तो अगर आपने अभी तक टिकट्स बुक नहीं कराई हैं तो जल्दी से टिकट्स बुक कराइए और इस मौके को नहीं गवाइए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio. Leica Radio.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: जी हाँ, संगम फिल्म से लिया था ये गाना जो 1964 में आई थी. और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो जो है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स. और इस शो में ऋतु शर्मा आपके साथ है. और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं याद दिलाती चलूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क जी टीवी के साथ मिलकर आपके लिए ला रहे हैं माइथोलॉजिकल स्टेज शो हमारे राम. और ये शो होने जा रहा है बिटवीन 9th एंड 12th जुलाई एट लंदन्स अवेंटिम अपोलो, जिसमें आशुतोष राणा रावण बने हैं, रावल बुच्चर ने राम का कैरेक्टर निभाया है, तरुण खन्ना महादेव बने हैं और भी बहुत ही खूबसूरती से सारे प्ले को स्टेज पर निभाया जाएगा. अगर आपने अभी तक टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी कीजिए क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं मिला है. और जरूर जाइए अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर, उन्हें भी दिखाइए श्री राम की ये कहानी, या कहूँ अद्भुत कहानी.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल साउथ हॉल ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए. उनके पास बहुत अच्छी साउथ दुबई के लिए डील्स हैं. आपको फोन करना है उन्हें 02085748410 पर. और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: लीजिए मुकेश जी की आवाज में ये गाना आपने सुना और अब अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार बाली आपका साथ देंगे। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी ढेर सारे गीतों के साथ। और हाँ, अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर दोबारा सुन सकते हैं। मौसम अच्छा है, मौसम को एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी को जिन्होंने सुबह से लेके अब तक मेरा साथ दिया, इतने खूबसूरत मैसेजेस भिजवाए। और थैंक यू मुकेश जसवंतरी जी कह रहे थे कि इज इट मी सिंगिंग, ओ ये आप गा रहे थे, मुझे लगा मुकेश जी गा रहे थे लेकिन आपका नाम भी मुकेश है। एनीवेज थैंक यू साथ देने के लिए। कल आपसे मेरी फिर से मुलाकात होगी, एक नया चिंतन होगा, कुछ नए गाने बजेंगे, कुछ नई बातें होंगी, तो साथ जरूर दीजिएगा। अगला गीत एंजॉय कीजिए, फिर से मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
1: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
2: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
1: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
2: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN।
1: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
5: This July, witness the rise of a new force.
4: Hi boys.
5: What's up? Yashraj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shalvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
4: Jisse tumse baat karni hai, rok lo.
5: Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal.
6: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है.
5: Don't miss India's biggest female-led action event.
6: अब इंडिया एल्फा से डरेगा.
5: Alpha in cinemas from the 3rd of July.
7: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 8574-8410।
9: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
10: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
11: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan Mandir na grand opening ma દર્શનનો લાભ આ પવિત્ર યાત્રામાં જોડાઓ આપના પરિવાર સાથે, જ્યાં મળશે શાંતિ, ભક્તિ અને આનંદ, અને સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂરનો આનંદ માણો. ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના મંત્રા હોલિડેઝ. કોલ કરો 02033736333. મંત્રા હોલિડેઝ, વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા?
12: ઇટ્સ અ ડોગ વોક. આઈ ડુ ઇટ એવરી ડે એટ હોમ. આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ પ્લાન ઇટ. Check the tide. Check my phone. Why don't I take my...
13: Hey, boy!
14: Coast Guard, we're stuck.
15: Okay, help's on its way.
16: Hold on, mate.
13: Shoes tied. Phone.
15: Back before dark, love. Okay.
16: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
17: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F. Face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A. Arms. Can they raise both arms and keep them there? S. Speech. Is their speech slurred? T. Time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
18: Next, Gold Afternoons with Bali Brambat on Leica Radio Midlands.
19: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: my God. What beautiful music. Lilting music. None other than Shiv Hari. Aaj Hari Prasad Chaurasia. He was born on 1st of July 1938 in Allahabad in UP, Uttar Pradesh. And he is celebrating his 88th birthday. Inki speciality as a flautist, meaning to say flute kaho, ya bansuri kaho, ya murli kaho. Bansuri, matlab ke bamboo and sur. Ji haan, bans wo hoti hai bamboo aur sur, aur dono ka milap usko bansuri kehte hain. So Hari Prasad Chaurasia, who specializes in the playing of the beautiful instrument. Iske 6 holes jab hote hain, it covers 2.5 octaves. 7 holes hote hain, to 3 octaves. Aisi, matlab details mein agar main baat karun, to it's such a fascinating subject, the flute. Lekin we are celebrating the 88th birthday of Hari Prasad Chaurasia. और ये म्यूजिक आप सुन रहे हैं ऑफ द ड्यूओ. अब एज अर्ली एज 1967 शिव कुमार शर्मा द ग्रेट संतूर प्लेयर एंड हरि प्रसाद चौरसिया एज आई मेंशन्ड द फ्लोटिस्ट दे रिकॉर्डेड एन एल्बम कॉल्ड कॉल ऑफ द वैली. यू नो फिर उसमें गिटारिस्ट थे वगैरह और भी लोग थे. लेकिन क्लासिकल म्यूजिक एल्बम अनयूजुअली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को मिलाया गया विद जैज एंड ब्लूज एंड ऑल यू नो एंड इट मेड इट पॉपुलर अमंग्स पीपल फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज. नाउ दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ शिव एंड हरि एंड न्यूमरस आउटिंग्स फॉलोड ऑल ओवर द ईयर्स. एंड देन obviously, one was a santur player and the other was a flautist. So, both of them went their own ways to do their own shows internationally, globally. Lekin, inhone haath jode saath mein, 1980s mein, to do 8 Hindi language films in total. Solo projects se dur hokar, inhone haath milakar filme ki, Bollywood ki, aur सब हिल गए. बिकॉज 1981 में सिलसिला वो फिल्म का म्यूजिक जब आया फिर आपने ये गाना सुना हम जो अभी आपने जो गाना सुना फिल्म फासले का. दैट्स राइट. हम चुप हैं के दिल सुन रहे हैं 1985 एंड देन विजय 1988. मोस्टली 3-4 साल के बाद वो करते रहते थे. पर 88 के बाद 89 में चांदनी फिल्म आई उसमें इन्होंने इतनी खूबसूरती से श्रीदेवी को गवा दिया एंड शी बिकेम अ सुपर डुपर हिट. इतना बेसुरा गाया लेकिन वो बेसुरापन इनको सूट करता था इनके अंदाज को. और इन्होंने यही सोचा था कि हमको नहीं चाहिए कि वो सुर में गाएं या ना तो कोई हमने ऑटो ट्यून यूज करना था क्योंकि इनको वही चाहिए था द नेचुरल वे शी सैंग इट. तो चांदनी फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई म्यूजिकली. उसके बाद आई लम्हे 1991 की. ऑफ कोर्स द चोपराज डिड इट एंड परंपरा 1993 एंड देन साहिबान 1993 एंड जब फिल्म डर आई जिसमें शाहरुख खान वाज द विलेन एंड सनी डियोल बोथ ऑफ देम इन दिस ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड डर. और उसके गाने आज भी हम सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं. 90s के गाने हम एक से ज़्यादा आपको सुना नहीं सकते इसलिए ये ट्रिब्यूट थोड़ा छोटा हो जाएगा. सो वी आर रिमेम्बरिंग शिव हरि एज अ ड्यूओ एंड हरि प्रसाद चौरसिया जी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं आज 88th हैप्पी बर्थडे. शिव कुमार शर्मा passed away at the age of 84 on 10th of May 2022, where the partnership ended. मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स. सुनते रहिएगा
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 125.5 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmbhatt in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी.
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99. एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99. फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99. लैला बासमती राइस 10 kg 11.99. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99. फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399. पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99. फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1. फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN.
2: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
4: in Dubai.
5: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है. ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता.
6: की कह रहे हो?
5: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता.
6: की कह रहे हो?
7: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
8: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया.
5: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है.
9: सिटी बॉन्ड ट्रैवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026.
10: डिस्कवर कैलाश मानसरोवर, चारधाम, अमरनाथ, श्रीलंका विद अयोध्या, अयोध्या विद काशी, द गोल्डन टेंपल अमृतसर एंड मोर.
9: बुक बिफोर द 31st ऑफ अक्टूबर एंड गेट £150 ऑफ कैलाश और £100 ऑफ एनी अदर यात्रा टूर.
10: Also explore 2026 cruises
9: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
11: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open from

0: अभी यहीं पे ये सिलसिला खत्म होता है बिकॉज 90s के गाने हम नहीं सुना सकते आपको, तो नेचुरली फिल्म परंपरा, साहिबान और फिल्म डर, इसके गाने हम नहीं सुना सकते, तो यहाँ पे ये सिलसिला पूरा होता है। लेकिन आगे जो एक ट्रिब्यूट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इट इज़ द ट्रिब्यूट ऑफ हेमन गुप्ता। भोसले तो आएगा थर्ड आवर में बिकॉज इट इज सुदेश भोसले जी की बर्थडे है आज। यस, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड गेट हिम ऑनलाइन, बट 66th बर्थडे टुडे। लेकिन हम हेमन गुप्ता की बात करते हैं। हेमन गुप्ता हैज बीन नोन एज ए फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर 1930 से 1967, समथिंग लाइक 37 ईयर्स एक्टिव थे। इनकी फिल्में जो थी आनंद मठ, फेरी FERRY, काबुली वाला, ये सब फिल्मों में उन्होंने प्रोड्यूसर एज डायरेक्टर का काम किया इन्होंने। Now he was born on 21st March 1914 in Rajmahal, which is in Jharkhand. अभी बड़ी खूबसूरत फैमिली। He grew up in a very large joint family. बोलते ना uncles, aunts, सब साथ में, cousins सब साथ में रहते थे। And father इनके he worked in a state treasury office for several years, and he was posted in Dhaka, Bangladesh, where Hemant spent his early childhood. And then आगे जाते हुए in he was very good with the studies. तो high school, undergraduation, college studies in Dhaka, where he graduated with academic honors under his undergrad. He moved to Kolkata, which used to be Calcutta in West Bengal. यहाँ तक कहानी ठीक है। फिर उसके बाद he joined the National Revolutionary Movement to obtain freedom from British rule. सोचो, ये बंदा इतना एजुकेटेड था, एंड ही जॉइन द यूथ विंग ऑफ द लोकल कांग्रेस पार्टी इन 1928, एंड ही वाज ड्रॉन इनटू व्हाट ब्रिटिश अथॉरिटीज कंसिडर्ड यू कैन से सबवर्सिव एक्टिविटीज, यू नो, जैसे कि ही वाज एलिजिडली कॉम्प्लिसिटी इन द मर्डर ऑफ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसका मर्डर जो हुआ था, दैट वॉज मिस्टर जेम्स पेडी एंड रॉबर्ट डगलस, तो वहाँ पे इनको एकम्प्लिस बनाया गया। एंड देन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द डक्का आसाम मेल ट्रेन रॉबरी केस, मतलब ये सब कांड करने के बाद उनको जेल में डाला गया। तो 6 साल तो जेल में गुजारे 1932 टू 1938। इट वाज लाइक बक्सार जेल एंड डीओली जेल, ये सब जेल्स में 6 साल। तो वहाँ पे रहकर ही गॉट इंटरेस्टेड इन टू फिल्म मेकिंग। वो सोच रहे थे कि फिल्म मेकिंग कैसे होती है। सो एक कीन इंटरेस्ट था इन आर्ट एंड साइंस ऑफ फिल्म मेकिंग। एंड व्हाइल इन जेल ही रिज्यूम्ड हिज एकेडमिक स्टडीज। जेल से रिहा होते ही वर्क्ड इन क्लोज एसोसिएशन विद इंडियाज सेलिब्रेटेड लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, एंड आगे जाते हुए एजुकेशन भी इन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन फिल्मों में जो इंटरेस्ट था इसलिए एज एन असिस्टेंट कहीं पे ज्वाइन किया। आई विल कट इट शॉर्ट। ऐसा करते करते करते करते करते करते आगे बढ़े, एंड ही गॉट इन टू फिल्म डम। उनके गाने नेक्स्ट आफ्टर द ब्रेक, मैं दो गाने उनके भी सुनाऊंगा। वी आर रिमेम्बरिंग हेमन गुप्ता जी ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency is equivalent to 1 sterling pound. US dollars 1.3237, Indian rupees 125.93, Pakistani rupees 368.18, Afghan Afghanis 84.56, and Kenyan shillings 171.16.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £97.88 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
4: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: This summer, don't just step out, stand out. The Janan and J. Summer Sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janan and J. Store from Saturday the 4th of July or shop the sale online from Friday the 3rd of July. Your next favorite look is waiting in store and online. Janan and J. Summer Sale, up to 70% off this summer. Make your statement.
6: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
7: OMG!
6: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
7: Murder Mystery!
6: In Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. mkdw.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963577. Greens by Danu. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety. It's on all of us. National Highways.
12: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
13: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
12: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
13: दिल तो टूट पे किया,
12: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
14: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
12: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 PM ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT394.
15: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
16: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
17: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 1801, and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
1: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. This is Leica Radio across the Midlands.

0: रोशन का संगीत और साहिद लुधियानवी की लिरिक्स, लेकिन हम याद कर रहे हैं हेमंत गुप्ता को। हेमंत गुप्ता ने फिल्म बाबर डायरेक्ट की थी। जी हाँ, हेमंत गुप्ता जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करके यूथ मूवमेंट में हिस्सा लिया, जेल में चले गए 6 साल, वहाँ पे इन्होंने फिल्म्स के बारे में स्टडी किया और उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस करके इन्होंने 3 फिल्में खूबसूरत जो की थी, उनमें से ये एक है। दूसरी काबुलीवाला।
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile.

0: अब अगर मैं बात करूं अबरार अलवी की, आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट हिम फॉर एवर बिकॉज ही वॉज सो टैलेंटेड, सो टैलेंटेड. इस हद तक के जैसे एक फिल्म थी साहेब बीवी और गुलाम, आपने जो अभी गाना सुना भंवरा बड़ा नादान है, उसमें बात ऐसी थी कि वो फिल्म का डायरेक्शन, सब लोग कहते हैं कि उनका नाम स्क्रीन पे आया था लेकिन डायरेक्टर तो गुरुदत्त थे. दैट इज़ नॉट ट्रू. आई टेल यू द एग्जैक्ट स्टोरी हाउ इट हैपन्ड, कि कैसे इनको डायरेक्शन मिला था. अभी गुरुदत्त ने इनिशियली क्या किया था, ही हैड थॉट ऑफ डायरेक्टिंग द फिल्म साहेब बीवी और गुलाम, ओके, 1962 की जो फिल्म थी. फिर बाद में ही रीच्ड आउट टू सत्यन बोस. सत्यन बोस वाज द डायरेक्टर ऑफ फिल्म बंदी, चलती का नाम गाड़ी, ऐसी सक्सेसफुल फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की थी. सो ही वेंट आउट टू सत्यन बोस. तो सत्यन बोस ने कहा कि यस आई कैन डायरेक्ट योर फिल्म साहेब बीबी और गुलाम, लेकिन इट विल बी विद माय ओन टीम, मेरी अपनी टीम. अभी गुरुदत्त जी बोले मेरी टीम तो 10 साल से मेरे साथ काम कर रही है, उनको मैं क्या जवाब दूंगा. तो उन्होंने कहा कि सॉरी बट इट हैज़ टू बी माय टीम. थोड़ा कोलैबोरेशन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना. तो फिर देन ही वेंट टू नितिन बोस. नितिन बोस जिन्होंने फिल्में की थी जैसे कि दीदार, कठपुतली, गंगा जमुना, यस. तो उन्होंने कहा कि ओके मुझे नरेशन चाहिए स्टोरी की. तो नरेशन के लिए पूरी स्क्रिप्ट तो लिखी थी हमारे अबरार अलवी जी ने. बाय द वे वी आर रिमेम्बरिंग अबरार अलवी फॉर हिज 99th बर्थ एनिवर्सरी. सो उन्होंने अबरार अलवी को कहा कि नरेशन के लिए आप आ जाओ. तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड इन सीक्वेंस, पूरी सीक्वेंस में मैंने रिकॉर्ड करके रखी है, तो मैं आपको वही भेज देता हूँ. बोले नहीं, योर प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड. तो फिर अबरार अलवी वेंट फॉर दैट पर्टिकुलर नरेशन. अभी गुरुदत्त जी के माइंड में क्या था, उन्होंने सोचा था कि ये नितिन बोस करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद आई थिंक आफ्टर अबाउट वन वीक ही सडनली अप्रोच्ड अबरार अलवी एंड ही हैड बीन ड्रिंकिंग. तो उसको कहा कि अबरार मैं चाहता हूं कि तू ये फिल्म डायरेक्ट कर. तो अबरार अलवी बोले कि नहीं, मैं ये मैं नहीं कर सकूंगा बिकॉज दिस इज बिल्ट ऑन बंगाली कल्चर एंड द न्यूएंसेस इन्वॉल्व्ड ऑफ बंगाली कल्चर एंड ऑल दैट. सो आई एम नॉट फेमिलियर विद ऑल दैट, सो मैं नहीं कर पाऊंगा ये. तो उन्होंने मना कर दिया. फिर वापस दो वीक के बाद गुरुदत्त जी ने वापस कहा. सो अबरार अलवी ने वापस मना कर दिया बिकॉज ही सेड कि ये बंदा दारू पी के, मतलब शराब पीकर मुझसे बोल रहे हैं, तो मतलब ही मस्ट बी नॉट इन हिज सेंसेस. तो उन्होंने वापस मना कर दिया. एक बार उनको समन किया गया उनकी ऑफिस में, अबरार अलवी को समन किया गया गुरुदत्त की ऑफिस में. सो ऑफिस में वो गए तो उन्होंने देखा कि he was smelling his breath and he realized that he's not been drinking and he's quite sober. Aur unhone kaha ke dekh, you know, red carpet welcome staff ko bola dalo, inko bulao. Ye sab karke inhone unko bahut manaya aur kaha ke dekho, we will be able to do it, you will be able to do it, main saath khada hu. Abhi hua kya ke baad mein Abrar Alvi maan gaye. Jab maan gaye तो उन्होंने इमीडिएटली उनको ग्रैंड होटल इन कोलकाता 3 महीने के लिए उनको बुक कर दिया विद बिमल मित्रा हु वाज द नॉवेलिस्ट. अभी नॉवेलिस्ट वाज एक्चुअली टॉकिंग इन बंगाली, ही डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी. सो अबरार अलवी को बंगाली नहीं आती थी, उन्होंने मेहनत करके बंगाली लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा सीखा एंड दूसरा एक ट्रांसलेटर रखा था वहाँ पे, उसने ट्रांसलेट की थी फिल्म. इवेंचुअली द सीन इज दैट बेस्ट फिल्म का खिताब मिला गुरुदत्त को एंड बेस्ट डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, ये सब अवार्ड्स जब अनाउंस किए गए, अबरार अलवी का नाम आया एंड पीपल वर थिंकिंग कि नहीं, डायरेक्शन तो गुरुदत्त की ही होगी, लेकिन नहीं, अबरार अलवी डिड डायरेक्ट एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ विद सो मेनी फिल्म्स दैट ही हैज डायरेक्टेड एंड दे वर ऑल सुपर डुपर हिट्स. अबरार अलवी, आई रियली एडमायर हिम सो मच. मैं तो हर बार सलाम करता हूँ उस आदमी को जो इतना टैलेंटेड था, नॉट ओनली राइटिंग द स्टोरीज पर डायलॉग राइटिंग, पूरी फिल्मों के डायलॉग्स जो हम लोग तालियां मारते हैं सिनेमा में बैठ के, और स्क्रीन प्ले, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर भी. सो आई एम रिमेम्बरिंग अबरार अलवी फॉर द 99th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिज. 1 जुलाई 1927 में जन्मे. And he passed away in Mumbai on 18th November 2009 at the age of 82. Gurudat ke saath jo filmein inhone ki thi. Abhi jo film aapne dekhi Pyasa, wo Pyasa film has been named in I think one of the it was named as one of the top 100 films. Pyasa, included in the all time 100 movies by Time magazine. And that was also story Pyasa ki Abrar Alvi. We are remembering Abrar Alvi today. Gaane sunenge aur kuch aur bhi baatein jo mujhe yaad aayegi main aapko bolta rahunga. He was active from 1954 to 1995 for 41 years. You know, and wo film Saheb Bibi aur Ghulam, usme only the songs of the film were directed by Gurudat. But the film was directed by Abrar Alvi. I hope you are clear on it at last. Main hoon Bali Brahmat, on Like a Gold with Gold Afternoons. Jude rahiyega.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For your £1 in British sterling, you can get up to 125.5. I repeat, 125.5 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah. Like our radio.
3: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: FIFA is happening everywhere. It's FIFA fever, football fever on knockout stage, round of 32. Yesterday, Côte d'Ivoire against Norway, and Norway won the match. France versus Sweden. France scored 3-0. So Sweden is out. Mexico versus Ecuador. Mexico scored 2 and they won the match. And tonight, 5 p.m., England versus Dr. Congo, main bolta hun. Dr. E, my meaning to say, the, of course, Democratic Republic of Congo. And 9 p.m., Belgium versus Senegal. These are the two matches today. 23 teams are out of the World Cup now. Haiti, South Africa, Uzbekistan, South Korea, Iran, Iraq, Uruguay, Saudi Arabia, New Zealand, Scotland, Turkey, Tunisia, Jordan, Panama, Germany. Then we got Curacao and Netherlands, Japan, Cote d'Ivoire, Sweden, Ecuador, Czechia and Qatar. They are all out. And let's see, those who are in, it's going to be a surprise winner. If not France, is going to be a surprise winner this year. And don't forget, you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: Gold Afternoons is sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
5: Welcome to the jungle.
6: Film, bilkul fake.

0: सबसे बड़ा रुपया, ये फिल्म के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले किए थे अबरार अलवी ने। नेक्स्ट गाना है फिल्म प्रोफेसर।
1: बैक टू बैक हिट्स अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: मजा कर ले मेरी जान, फिर से न होगा जवान, ओ हो बुरा बुरा मत करो।

0: Boys. Boys. Boys. Bonnie Brumba.
1: Okay, so Sudeshi and I, we sang this song from a film called Andolan. And हम जब भी मिलते हैं प्यार से ये गाने को याद करते हैं कैसे हमने स्टूडियो में गाया था. And Sudeshi is you can say one of my best friends in the industry. जब भी मुंबई जाता हूँ तो उनके साथ बैठ के वड़ा पाव खाने का जो मज़ा आता ना सुदेश जी के, उनके घर के आगे जब वो स्कूल से लौटते थे तो एक वड़ा पाव की जगह जो थी वहाँ पे मुझे ले गए थे और बोले कि मैं जब स्कूल में था तब से ये जगह पे आता हूँ और आज भी मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरा दूसरा घर जैसा है. एंड हिज हाउस इज़ अबाउट यू कैन से 5 मिनट वॉक फ्रॉम देयर, या एंड 2 मिनट ड्राइव टू हिज हाउस. So last time हम गए थे, हमने फोटोज खींची, हमने वीडियोज भी खींची. आई वॉज सो अमेज्ड, आई सेड जब भी मैं लोगों से बात करूँगा मैं फोटोज दिखाऊँगा कि दिस इज द प्लेस वेयर सुदेश भोसले जी यूज टू हैव वड़ा पाव व्हेन ही वाज एट स्कूल. सो हमने अच्छी फोटोज खींची है, कभी मौका मिला तो मैं आपको शेयर करूँगा. दिस वॉज इन लास्ट अक्टूबर नवम्बर. विशिंग सुदेश भोसले जी born on 1st of July 1960, happy 66th birthday. Of course, inka sabse favorite aur sabse mashhoor gana Jumma Jumma De De. And after that, all the songs of Amitabh Bachchan were sung by him until Amitabh Bachchan himself started singing some of his songs. Lekin aaj bhi dekha jaye to a versatile Sudesh Bhosle who does a lot of mimicry, Ashok Kumar, संजीव कुमार सबकी मिमिक्री जैसे करते हैं वो. आर डी बर्मन के गाने स्टेज पे जब गाते हैं, एस डी बर्मन के गाने जब गाते हैं उनकी आवाज़ में, एंड ही कम्स अ लॉट ऑन नेचुरली रियलिटी शोज, एंड अ वेरी टैलेंटेड मैन हु द होल वर्ल्ड अप्रिशिएट्स अ लॉट. आशा भोसले जी के साथ तो आई मीन पीपल थॉट ही इज रिलेटेड टू आशा जी, but it's just the surname that matches. Otherwise, rishta to tha hi, no doubt about that. As you saw during the funeral of Asha ji, he was right at the front. Remembering and wishing Sudesh Bhosle ji today, happy birthday, happy 66th birthday. Maine phone kiya lekin uthaya nahi, matlab ke wo kahin party mein honge.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: For your £1 in British sterling, you can get up to, let me get the latest rate because sometimes the rates do fluctuate. And the last 2 hours the rate has been the same, and at the moment it's still the same. Your £1 in British sterling can get you up to 125.5 Indian rupees. Don't forget to exchange at the branch, online, or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: 4 बजे मैं भागूंगा यहां से, because 5 बजे England versus DR Congo, that is Democratic Republic of Congo. 5 बजे का मैच है, and I've got to shoot to Southall to Brilliant. Yes, I shall be at the Brilliant Resto Bar and watching England versus DR Congo with the Any Money Group. So, आज मजा आने वाला है in the football. And don't forget, 9 p.m. is Belgium versus Senegal. And the matches are hotting up in the knockout stage, round of 32. Come on, England!
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: Don't forget, you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
2: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio.
4: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
5: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
4: बिग डील्स बिग सेविंग्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
8: Southall Travel, Atoll Protected.
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
10: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ एट द

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak. World class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 0208839 0880 or visit ragasun.com. Location, design, management ya catering. Ragasun.
2: This summer, don't just step out, stand out. The Janan and J-Dot summer sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janan and J-Dot store from Saturday the 4th of July or shop the sale online from Friday the 3rd of July. Your next favorite look is waiting in store and online. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off this summer. Make your statement.
3: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ Netflix and chill, a देसी तड़का is total risk, है ना?
4: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
3: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
5: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the...
6: Coast Guard, help!
5: Okay, help's on its way.
7: Grab my hand!
8: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
9: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
10: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
11: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में. कुछ एग्जाइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन, जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
12: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Oh, monsieur Giroux. Oh!
1: शंकर जयकिशन ने इसको ढूंढा था, इकबाल सिंह, एक फूल चार कांटे, एंड शैलेंद्र जी ने ये गाना लिखा। होप यू एंजॉय इट, 1960 का हॉट गाना। नेक्स्ट वन इज खेल खेल में, 1975।
2: It's summer on the Leica Radio Network.
1: And Sandy Shah is here, and he's going to continue with the drive time, and Raj Patan on Leica Radio Midlands.
3: Hey,

0: And I wish Anant K. Patel, who's having wonderful rehearsals in Watford with Rajesh Iyer. He's the Alankaran Award winner 2025. I did a show with him in Mumbai in October, November. Yes, with Kumar Sanu's son, Jan Kumar Sanu. Best of luck tonight.
1: This is Leica Gold across Greater London.
0: ये गाना है दिल ने फिर याद किया. हमने भी आपको बहुत याद किया, आपने मुझे याद किया, कल वापस याद करना, मैं आ जाऊंगा यही हॉट सीट पे. बाली ब्रह्मट का नमस्कार. सोनिक ओमी का संगीत है और जीएल रावल की लिरिक्स है. कलियों ने घूंघट खोला.

0: Well, great news. England just scored, by the way. So it's now 1-1. England at Congo. Let's see if England can get another one in. Otherwise, it will be going to extra time and then penalties. We'll keep you posted here on Leica Radio. But yeah, England have just scored. Harry Kane, after 75 minutes, 1-1. Keep it on Leica Radio. 6:39. Leica Radio.
1: Drive is sponsored by Pepe's. Fancy trying something new? Pepe's is launching, for a limited time, a rich harissa sweet hot honey and melted cheddar in focaccia. Harissa Honey Melt. Go on, try it.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots, learn coding. Use code LEICA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/LEICA or call 07533065549.
6: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
7: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
6: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
1: Leica Radio Network प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
8: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org. When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
9: Four beers, please, garçon!
8: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
10: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine, but mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
11: Okay, help's on its way.
9: Grab my hand!
12: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
13: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
14: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
15: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स सबके लिए कुछ न कुछ है 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS पर चाहे डाइन इन करो टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ कॉल कीजिए 0116-332-5100 एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
8: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Time to get naughty and nostalgic as Radio Wally takes you through the noughties.
2: Welcome to the jungle.
3: Film bilkul fake.
2: Hamari film army wali.
4: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
2: स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड अ ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
5: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
6: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
7: किस लिए फिल्म में.
3: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02 0 3 9 6 3 5 7 5 7. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
8: In Dubai.
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
10: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 now. Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए.
12: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा.
13: नाम परशुराम. अधर्म का करता हूँ काम तमाम.
11: अरे कहाँ हो तुम?
12: हो आलो आलो.
13: परिवार उसके लिए चारों धाम. बाहर वो है परशुराम.
0: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
14: This August, witness the UK television premiere of the blockbuster event everyone's been waiting for. Starring Ranveer Singh, Akshay Khanna, R. Madhavan and Sanjay Dutt.
15: Rehman Dakes ki divi maut. बड़ी कसाई नुमा होती है.
14: डोंट मिस द यूके टेलीविजन प्रीमियर ऑफ धुरंधर.
16: अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं.
14: एक्सक्लूसिवली ऑन उत्सव गोल्ड.
0: स्काई चैनल 715, वर्जिन मीडिया 801 एंड EE393.
17: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
0: Listen back to your favorite shows by logging on to likeradio.com and selecting Midlands or the mobile app. Remembering and reminiscing those nostalgically noughties with Radio Wally.

0: This is Leica Radio.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
5: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
6: Okay, help's on its way.
7: Grab my hand!
8: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
9: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
10: LenFi means quicker and safe way to send money.
11: LenFi means low transaction fees and great exchange rates.
10: LenFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
11: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LenFi. Download the LEMFI mobile app today.
12: LenFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
13: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में
0: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.